0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी का फ्रॉक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता सेरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बस ओवेंटुरी नी लिली लिली ओवेंटुरी नी पापेल ओवेंटुरी नी ना कंडीशन ओवेंटुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबने मक हाँ ना इन ओवेंटुरी बारा माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम हम से में इंडिविडुअल नियन इधर पॉइस हमने मिसाजन माका तंबस ओवेंटुरी दा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडो मिसो से डारे नी हने सने आन उसी तो थ्योरिया बारा की रा उसी तरह ना यीशु क्रिस्टु निहाते थे हने सने ओलाबेले दे अनो हाडो मिहाउ सेवन हीरा ओला हाडो मियो ने मालुक सीरा तंबने मखाउ दिहन से हाउ ये ना मुरारा हाउ दिया ना ने सने ओलाबेले दे अनो हाडो मिहाउ सेवन हीरा ओला हाडो मिसो सेदारे तंबे इंटरेस है उसी इतने हमु तो कि इंटरेस है बस उसे डारे ने मक इम्पोर्टेंट है अतुलोर उसे डारे जन बा मुरिस दिया जोवेंटुरी तेंगे सही आजेंट ट्रांसफॉर्मेटर बा बुआत ने बे मक ला दिया नु जोवेंटुरी तेंगे हातुर बुआत ने बे मक लॉस दिहन लॉस साला दिहन साला हाउ ये स्टेटमेंट तुझे करते थे बस जोवेंटुरी सिरा ने सने हाउ कॉन्ट्रा हाउ निया आमन सेबा हीरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ निया इरेस्पोंसिबिलिटी दारे हु कॉन्ट्रा निनिया रेस्पोंसिबिलिटी दारे मकला दिया मबे हाउ कॉन्ट्रा सेबा हीरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमातुरी दारे कॉन्ट्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी दारे मका साला कॉन्सेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत ने मक लॉस दिहन साला इदन मक इंपोर्टेंट लावेले दिहन निया या कार्गो निया एलिट Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah mas jadi ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa venturi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tetes. La bela cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filofali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne rebe makfura atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone fini phone tenki kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario no sosidade dan nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional obrigado
0: ke maloko vintis la espera kata amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amin tolu hasis ang husi ita bos sira futa tirung husi amin tolu la haluha hato adeus i obrigada